निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे नानक सिर हर भगत है ते राखो मन मा।

हस कीट के बीज समाना राव रंग जय सर जाना अदब अलख पुरग अवगामी सब घट घट के अंतर जामी अलग रूप अचन भेखा राग रंग जह रूप ना रेखा बरन चैन सब होते न्यारा आत पुरग अदब अभिकारा बरन चैन जय जात न पाता सत्र मित्र जह तात न माता सब ते दूर सब अंते नेरा जल थल महियल जाहे बसेरा अनहद रूप अनाहद बानी चरण शरण जय बस

बहर आप ही बीच मिलायो। दानव देव फनिंद अपारा, गंधर्व जाच रच शुभ चारा, भूत भवक भवान कहानी, घट घट के पट पट

सब हूँ सर्व ठार पहचाना, काल रहत अनकाल स्वरूपा, अलख पुरख अवगत अवधूता, जात पात यह चहन न बरना, अवगत देव अक्षय अनभरमा, सबको काल सबन को करता, रोग सोग दो कन को हरता, एक चेत जह एक छिन ध्यायो, काल फांस के बीच न आयो। तो प्रसाद कबित कतहु सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कतहु अचेत हो के सोवत अचेत हो, कतहु भिकारी हो

जान कहूँ महाराजन छीन छेदलेत हो। कहूँ बेदरीद कहूँ तास बेपरीद कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो। कहूँ जाच गंधर बोरक कहूँ विद्याधर कहूँ भय किन्नर पिसाज कहूँ प्रेत हो। कहूँ हो के हिंदू आ गायत्री को गुपद जपयो। कहूँ हो के तुर का पुकारे बांग देत हो। कहूँ कोप काव हो के पुराण को पढ़त मत कत हूँ कुरान को निदान जान लेत हो। कहूँ बेदरीद कहूँ तास विपरीत कहूँ

इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो का तो हूँ विचार विचारत को विचारत हो कहूँ नेज नार पर नार के निकेत हो कहूँ बेदरित कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सर्गुण समेत हो कहूँ शास्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के निकेत हो कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला मिलानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो कहूँ धर्म धामी कहूँ सरव ठोर कामी कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो कहूँ बेदरित कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सर्गुण समेत हो कहूँ जटाधारी कहूँ कंटी धरे ब्रह्मचारी कहूँ योग साधी कहूँ साधना करत हो कहूँ कान फारे को डंडी होय पतारे कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पर धरत हो का तुहू सिपाही हो के सादत सिलाहन का कहूँ छत्री हो के अरे मारत मरत हो कहूँ भूम भार को उतारत हो महाराज कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो कहूँ गीत नाद के निदान को बतावत हो कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो का तुहू पयुक हो के पीवत पीवावत हो का तुहू मयुक कहूँ मद पान हो कहूँ मासूर हो के

कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक कहूँ पूरन प्रजंक कहूँ शुद्धता की सार हो कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम कहूँ कुतस्कु करम कहूँ धर्म के प्रकार हो कहूँ पावन हारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी नार कहूँ नार हो कहूँ छत्रधारी कहूँ छालाधारे छल भारी कहूँ छकवारी कहूँ छल के प्रकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजय कहूँ धे नृत्य के नचय कहूँ नार को आकार हो कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ बेन के बजया कहूँ धेन के चरैया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो शुद्धता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दोखी निरंकार हो निर्जोर निरूपों के सुंदर स्वरूपों के भूपन के भूपों के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग शोक के मिटैया की तो मानी महामान हो विद्या के विचारों के अद्वै अवतारों के शुद्धता की सूरत के शुद्धता की शान हो जोबन के जाल हो के काल हो के सतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो कहूँ ब्रह्मवाद कहूँ विद्या को विखाद कहूँ नाद को निनाद कहूँ पूरन भगत हो कहूँ बेदरीद कहूँ विद्या की प्रतीत कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वालासी जगत हो पूरन प्रताप कहूँ इकाति को जाप कहूँ ताप को अताप कहूँ जोग ते डिगत हो कहूँ बार दे कहूँ छल सुछनाय ले सर्व काल स्रव ठार एक से लगत हो तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिर घर जोग जति के सूर सुरदारदन शुद्ध सुदानिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को।

जरे जर संग अनुप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कुदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भू बलि न्यावासीसना जात बिचारे एते भय तो कहाँ भय भूपदंत को नांगी पाइप धारे जीत फिरे सब देव दिशान को बाजा ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भवे के भगवान के भूपद कौन कने नहीं जात बिचारे त्रिपा श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नहान दया दम दान सो संजम देव अनेक विशेख है वेद पुराण के देव कुरान जमीन जमान समान के पेख है पौन हार यति जधार समय सो विचार हजारक देख है त्रि भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सुपा तुरंत वासो सासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार विचार सार की धार भचैया तोर दे मलिंद मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनि निशाचर भूत भगवान जपेंगे जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपाएंगे पुन प्रतापन बार जाय धुन पापन के वो पंज खपाएंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जाग सत्र सब लोग चपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र राधे जौंत लोग को राज करेंगे कोट स्नान के जातिक दान स्वयंवर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर भीषण सची पद अंत फसे जम फांस परेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है पाक ते नर फेर ना देह धरेंगे कहा भयो जो दुलोचन बूंद के बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नाथ प्रिय लिए सा समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो बास की विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो वैद बतायो साचे कहो सो न ले हो सब जेन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धर्यो सेर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लखियो रवाची दिशा में काहू पुछा को शीश निभायो कोदान को पूजत है बस कोमृतान को पूजन धायो पूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो तो प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन द चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछज तेज उदार अनभिज रूप दुरांत सब जगत भगत महंत कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थाप्यो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुख चार गावत वेद जह नेत निगम कहंत मुख चार बकत बेअंत अनभेज अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत प्रसार रचियो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड जह अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत प्रसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को न कबूल कई सिंध बिन नगेंद्र कई मच्छ कज फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विष्ण अवतार कई इंद्र वार मुहार कई वेद अमुचार कई रुद्र छुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कौ कतत ही सो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्दताप दुरंत कई उर्द बास न्यास कहूँ जोग भेष उदास कहूँ नीली करम करंत कहूँ पौन हार दुरंत कहूँ तीर दान अपार कहूँ जग करम उदार कहूँ अगन होत्र अनूप कहूँ न्याय राज विभूत कहूँ शास्त्र सिमृत रीत कहूँ वेद सिंह विपरीत कई देश देश फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहूँ गरज जल मह जाप कहूँ सहतन प्रताप कहूँ बाज बनह करंत कहूँ ताप तनह सहंत
कहूँ ग्रस्त धर्म पार, कहूँ राजरीत उदार, कहूँ रोग रहत अभरम, कहूँ कर्म करत अकर्म, कहूँ शेख ब्रह्म स्वरूप, कहूँ नीत राज अनूप, कहूँ रोग शोक विहीन, कहूँ एक भगत अधीन, कहूँ रंग राजकुमार, कहूँ वेद व्यास अवतार, कई ब्रह्म वेद रटंत, कई शेख नाम उचरंत, बैरा कहूँ सन्यास, कहूँ

जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि उफे हरि छिते हरि नबे हरि इहा हरि उहा हरि जिमी हरि जमा हरि अले घरि अभे घरि अधोख हरि अद्वै घरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपाद हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अडंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अछेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जल सुई थल सुई नदी सुई नद सुई वृक्ष सुई पत सुई छित सुई ऊर्ध सुई भजस्वंग भजस्वंग रटस्वंग ठटस्वंग जिमी तुहि जमा तुहि मकी तुहि मका तुहि अभू तुहि अभय तुहि अछु तुहि अछय तुहि जत सुई व्रत सुई गत सुहि मत सुहि तुहि।

हुकमल हरि का जगत हावि भूदारी गिद्वा मसान वास करो ई करत है। घुगुमड वासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदी मोन सदे ही मरत है। बिंद के सदत हीर की बटैया देत बंदरा सदी उपाय नंगे ही फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है। भूत बने चारी तेत छौना सपे दूधाधारी पान के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भचैया दान लोभ के तजैया दे तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताए पंछी की बटैया देर बगला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी ना है ऐसे ना प्रपंच मन भूलानियत है। भूम के भसैया था भूचरी के जैया कह नभ के उड़ैया सो चिरैया के बखानी है। फल के भसैया था बांदरी के जैया कह आदित फिरैया दे तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आखे भसैया सो चकोर सब मानी है। सूरज सिवैया था कौल की बंडाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कच्छ मच्छ तेंदुआ कह सब कौल नाव कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर के गोपाल सबे धेन जारी रिखी कस नाम के महंत लहियत है। माधव भवर टेरू को कन्हैया नाम कांस को बजैया जम दूत कहियत है। मूढ़ रूढ़ पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा व्रत पाल जम जालते रहत है। जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास दे पसहत है। निवली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठाटे न बहत है। मानो फनिंदे जानो न पावे भेद वेद अकते नेत नेत के कहते है। नाचत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करो ही करत है। चंद्रमा ते सीतल सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से ना वेद चारी सनद कुमार सी तपस्या ना अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराए फिरत है। एक शिव भय एक गय एक फेर भय रामचंद्र किशन के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विषण के ते वेदा पुराण के ते सिमरत समूहन के होए होए बिताए है। मोंदी मदार के ते असनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बद भय है। पीरा पिकामर के ते गने न पर देते भूमि ते हो गए फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्रई की छाया कहीं कोसला चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरा तेज बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से मही पाओ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिली सर दुर्योधन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सेज दे करे अनेक कोमती कपट भेद पोस्ती अनेक दानी वात है शीश का। कहा भयो मल्ल जो पे काटत अनेक दंड सोचना डंडात अष्टांग असतीस का। कहा भयो रोगी जो पे डारे रहे उर्दमुख मनते न मुंडे हरायो आदिश का। कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जाके दीस का। शीश पट कत जाके कान में खजूरा दसे मुंड छट कत मित्र पुत्र हो के शोक सा। आंख को चरैया फल फूल को भछैया सदा बन को भ्रमय और दूसरों न भोग सा। कहा भयो भेड़ जो घससी वृक्षन सा माटी को भछैया बोल पूछ लीजिए जोग सा। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेटे पर लोग सा। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करे ओई करत है। एक पाए ठाटे सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाँव भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक युग एक ठौर बास करे कागर चील देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है।
जैसे एक स्वांगी कहूँ जो गया बैरागी बने कब हूँ सन्यास भेद बने कह दिखावई कहूँ पौन हरि कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे वारी कहूँ दंड धारियों के लोगन भ्रमावई कामना अधीन परे नाचत नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पांच बार गिदर पुकारे परे सीध काल कुंच हरक कुंच रह गदहा अनेकता पुकार ही कहा भयो जो पे कलवत्र लियो काशी भी चीर चीर चोटा कुठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग धार डार डार फांस ठक मार मार डार ही डूबे नरक धार मुड़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो बपाइये तापना तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए थे जो बपाइये ता जाप देव सा पूजना सदी तुही उचरत है नभ के उड़े थे जो पप नारायण पाइये ता अनल आकाश पंछी डोलबो करत है आग में जरते गत रांड की परत कर पताल के वासी क्यों भुजंग ना दरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अन मान बो हिंदू तुरा को रावदी मान सभी मानस की जा सब एक पहचान बो करता करीम सोई राजक रहीम ओई दूसरो ना भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही सेव सब ही को गुर देव एक ही स्वरूप सब एक जो जान बो देव राम असी सोई पूजाओ निवाजो ही मान सब एक पे अनेक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेद को प्रभाव है एक नैन एक कान एक दे एक बान खाक बाद आतस आव को रलाव है अल्लाह भेग सोई पुरानो कुरानो एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे आग दे कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूर थे अनेक धूर पूरत है धूर के कणु का फेर धूर ही समाएंगे जैसे एक नत तरंग को डूबत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूप दे अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे केते का छमाच केते उनको करत भच्छ केते अच्छ वच हुए सब पच्छ उट जाएंगे केते ना बीज अज पच को करेंगे भच्छ केतक प्रत्यक्ष हुए पचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहा काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे तेज हुआ तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे कुकत फिरत के ते रोवत मरत के ते जल में डुबत के ते आग में जरत है केते गंग बासी केते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के भरमाई फिरत है करबत सहत केते भूम में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दुख को भरत है ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के बीन जग जारी मरत है शोध हरे देवता विरोध हरे दानो बड़े बोध हरे बोधक प्रबोध हरे जापसी घस हरे चंदन लगाए हरे चोवा चार पूज हरे पाहन चढ़ाए हरे लापसी गा हरे गोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हरे भीतन लगाए हरे छापसी गाय हरे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब पद हरे पंडित तपंत हरे तापसी तो प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद न रागंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न मोहंग न ग्रोहंग न द्रोहंग न द्वैखंग न कर्मंग न भ्रमंग न जन्मंग न जातंग न मित्रंग न सत्रंग न पितरंग न मातंग न नेहंग न गेहंग न कामंग न धामंग न पुत्रंग न मित्रंग न सत्रंग न भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा सत्य दा बुद्ध दा वृद्ध रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग कहा वास्ता को फिरे कौन भेखंग कहा नामता को कहा का कहावे कहा कह बखानो कह मैं ना आवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग अद्वैखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे आद अद्वै अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे
हिते कृष्ण से कीट कोटे उपाए उसारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाधे अभय आद अदब अविनाशी परयंग परा परम पूरण प्रकाशी न आधंग न व्याधंग अघाधंग स्वरूपे अखंड प्रतावाद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग स नेहंग स नाथे उदंडे।

भंग ना चौभंग भूतंग भेखंग ना सतरंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना मोहंग अजोनी अछे आदजवै अजोहंग ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधे ना रोगंग ना सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहंग ना भरमंग ना भायंग ना रूपंग ना भूपंग ना कायंग ना कर्मंग ना त्रासंग ना प्रासंग ना भेदंग ना भरमंग सदैवंग सदा सर्ज बिरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभा आद अनुक्तंग प्रतापे अजुक्तंग अच्छे आद अविक्ते अथापे विभुक्तंग अच्छे आद अच्छाय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे ना नेहंग ना गेहंग ना सोकंग ना साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मंग ना भरमंग ना सर्मंग ना साके ना परमंग ना चरमंग ना कर्मंग ना बाके ना सतरंग ना मित्रंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेष के धर्म थांबे कहूं राज के साज के बाज तांबे कहूं अक्षर के पक्षर के से साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृत लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपंग कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपंग कहूं ने गृहंग कहूं दे दोखंग कहूं औखदी रोग के सोग सोखंग कहूं देव विद्या कहूं दैत पानी कहूं जज गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राशि सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतंग कहूं भूम की भुगत में भरम भुगतंग कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जज विद्या धरे मानवी हो कहूं राशि हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के रिष्ट कन्या कहूं वेद विद्या कहूं बेउंबानी कहूं कोप की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपंग कहूं मद्र बानी कहूं छद्र स्वरूपंग कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपंग कहूं चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपंग कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ पुराण के गीत गावे कहूं सोत सेकंग कहूं ब्रह्म धर्मंग कहूं भृद अवस्था कहूं बाल कर्मंग कहूं ज्वाल स्वरूपंग जरा रह देहंग कहूं ने देहंग कहूं त्याग रेहंग कहूं जोग भोगंग कहूं रोग रागंग कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागंग कहूं राज साजंग कहूं राज रीतंग कहूं पौरण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतंग कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पश्चिमी संस्कृति हो कहूं देश भाग्या कहूं देववाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं यंत्र रीतंग कहूं शस्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देवर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतंग कहूं मलेन भाग्या कहूं वेद रीतंग कहूं नृत्य विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारू गुड़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा बछरा हो कहूं वीर विद्या अभूतं प्रभा हो कहूं छल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजंग धीराजा अधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अछ आल अदवै विधाता ना त्रस्तंग ना ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तु अस्तंग अभूते तो प्रसाद पादड़ी छंद अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अनाश अनतोट तेज अन खुट भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अनभूत तेज अन शेज गाद करता सदी हरता सनात आसन डोल अनभूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मान जय कर्म भर नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने व्योध मान जय जात पान नहीं शत्रु मित्र जय ने गे ने चैन क्षेत्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म जात नहीं भरम भेक जय करम भरम नहीं जात पा नहीं ने गे नहीं पितृ मान जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्याज जय रोग शोक नहीं सत्र साज जय त्रास वार नहीं दे ना जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल प्याल कटे हो न अंग अच्छा स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलग रूप कथत कते जय अलग रूप आसन डोल जय मित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन आनंद कई कलव योग साध दुरंत तन सी बरखा संत कई कलप एक आसन वितंत
कई जतन जोग विद्या विचार साधन तदप पावत न पार कई उर्ध्वादेशन भ्रमंत कई उर्ध्वमत पाप के झुलंत कई सिमरे शास्त्र उचरंत वेद कई कोप काल कथत कते कई अगन होत्र कई पान हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साग पे पत्र भक्ष नहीं तदप देह होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग आदि करम कहूं अगन होत्र कहूं तीरथ धर्म कई देह देह भाकारटन कई देह देह विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नायकता पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमसो भरम कई अगत कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदप तास पायत न पार कहूं राजरीत कहूं जोग धर्म कई सिमरित शास्त्र उत्तरस्व करम निवली आद करम कहूं हस्तदान कहूं अश्वमेध मखो बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं वृद्ध चार कहूं करत जज गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ कर्म कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत शास्त्र सिमरित उच्चार कई भजत एक पग निराधार कई ने दे कई गे वाद कई भ्रम देसन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लंडकत लटकंत जाप कई जपत जो कल्पक प्रजंत नहीं तदप तास पायत न अंत कई करत गोड विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भकत सगर नहीं परत पान भो करत होम अर जग दान।

जय जम्पह जुगण जुओ जुवंग भय कंपो मेर पयाल भुवंग तब तापस धर्म जलेरु थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखे सरुगा भेद अभियंग अनखंड भूत छेद छियंग अनकाल पाल दयाल सुंग जय ठटियर मेर काल भुवंग अनखंड मंड प्रचंड रंग जय रचंग देव देव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचे श्रम कीन मका जय रागना रूपना रेग रुखंग जय तापना सापना शोक सुखंग जय रोगना सोगना भोग भोग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जातना पातना माध पितंग जय रचे छत्री छत्र छितंग जय रागना रेखना रोग भणंग जय द्वैग न दागना दो गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस न दस दस चार करी नौ खंड सचियो रज रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो से सिंदर उबिंद नगिंद नगंग श्री जच गंद्र फणिंद भुजय रज देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंड सेतज उद भुजंग किए देव देव सराज पितंग अन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातना पातना जो जुतंग जय तातना मातना भ्रात सुतंग जय रोगना सोगना भोग भोग जय जंपा किन्नर जच जुवंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांत गण भूत भवेक भवान तुअंग जय अंडज सेतज जेर रज रज भूम काल पताल जलंग रज पावक पान प्रचंड बलि बन जास कियो फल फूल कली भो मेर का निवास तंग रज रोज का द चंद्र वृतंग दुध चंद दिनेश दीप दई जय पावक पान प्रचंड मई जय खंड खंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्द चार रचे नर गंध्र देव अदेव सचे अन धूत अभूत अछूत मतंग अन गाद अभ्याद अनाद गतंग अन खेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतुर चक्र फिरंग जय रागना रंगना रेग रुखंग जय सोगना भोगना जोग जुगंग भो भंजन गंजन आश्रंग जय बंदा देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज ब्रितंग जय पार पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप अदंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपै सुत सिंध अधो मुख ताप जपै कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नय कृपा निध पान पर जय फोकर धर्म सवै तज है क्षेत्र कृपा नित को जप है तेव या भव सागर को तर है भव भूलना देह पुनर्धर है एक नाम बिना ने कोल वृति वेद उचार सा सुति पुनर्धर है एक नाम बिना ने कोल वृति वेद उचार

आत्मा जात है ना पाचयन वरण है अधिक असेक भेग सदयु विश्व भरण है विश्वभर विश्वनाथ अभिषेक विश्व भरण है जिमी जमान के बिखय सदयु करम भरम है अद्वैग है अभेग है अलेखना ज्ञानी है सदयु सर्व ठौर में अभिषेक आन मानी है न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अकुरान नेत नेत कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताई है गंजा देव हकौ सुख पाई है जिमी जमान के बिखय समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन और मकान प्रमाण तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दोग है न दाग है न द्वेग है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जज है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न शाह है न शाह को कुमार है न नेह है न गे है न देव को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेग है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अकाल खंड रूप है छेद है भेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र न छिद्र की विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैग है न भेग है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है भर्म है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेग है बलिया रूप राग रंग है न द्वैग है न भेग है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न क्षेत्र चेहन वर्ण है व्यंत है अनंत तेज जानिए अभूम अभिज है सदा अच्छेद तेज मानिए न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखिए अधोग है अदाग है अक्षय प्रताप देखिए न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज सी विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ कार है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है न रंग न रंग राग रूप है न रूप रेग रार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपी न राधपी करण सेव है सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आत जे बड़े तपस्पति विशेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाट पेखी है अगाध आदेव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सने जानिए सदयु सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह तुरंत द्रोह देह के अनंत भंत सोद है तो प्रसाद रूआमल छंद रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण विहीन रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण विहीन आद नाद अगाध प्रग सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जागो आद प्रग अपार हस कीट बिखै बसे सब ठौर में निर्धार जात पात न ता जागो मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखै रम्यो जय चक्र चैन न चित्र आदेव दार मुदर अकार नाद अनंत आद अंत न जानी अभिखा देव तुरंत देव भेव न जाने जय मरम वेद न कतेब सनक औसन केश नंदन पावई न हसेब जज किन्नर मच्छ मानस मुर्ग और गपार नेत निर्भकारी से सक्रो मुख चार सर्व सपद पदार के तर जाप ही जय जाप आदेव गा तेज अनाद मुरद ताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहो विराज धीराज राज प्रवीण जज गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णंगे बिखे विराज सूत्र विव नाहे गुण गौण न भील भीकर ब्रह्म शेख स्वरूप राजिवस न मध्य उर्द न भू आकाश अनूप जा जन्म न काल करम न धर्म करम प्रवीण तीर जात न देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपद पतार के तर जानिए जय ज्योत शेष नाम सहस फन नेद पूरन होत सो सो हटे सब सुर विरोध दानो सर्व गाय गाय हटे गंधर्व।

किन्नर गर्भ पड़द पड़द थके महाकवि गड़द गाढ़ अनंत हार हार कहो सबो मिल नाम नाम दुरंत वेद भेव न पायो लखियो न सेव कतेब देव दानो मूड मानो जच न जाने जेब भूत भप भवान भूपत आद नाथ अनाथ अगन भाई जले थले में सरव ठौर निवास देखे न ने सने अबे नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व पंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल भेक चक्र चैन बरन जाको जात पात न भेक रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लाय सर्व घाय सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को ब्रजपाल दीन बंद दयाल स्वामी आदे उपाल दीन बंद प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार बरन चेना चक्र जाको चक्र चेना कार जात पात्र जात पात ना गोत्र गाथा रूप रेख ना बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भोगो भरन दुष्ट गंजन शत्रु पंजन पर प्रमाथ दुष्ट हरता श्रेष्ठ करता जगत में जय गाथ भूत भव भविक भगवान महादेव अगंज आज अंतना श्रीपद परम पुरख अभंज धर्म के अनकरम जय दकीन तौन पुसार देव देव गंधर्व किन्नर माच्छ कच्छ अपार भूम का जले थले में मानिए जय नाम दुष्ट हरता से पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल कंद अघट अंडन दुष्ट खंडल काल हुके काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निर्भाम सर्व भुक्ता सर्व झुकता सर्व करम प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्र सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विश्वभरता आदु का पार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव खंड भूम का जले थले में जप जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदेव पार श्रीपा दुष्ट पुष्ट

जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावही से रुद्रा मुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुखचार आदंत न मज्जा को भूत भवान सत द्वापर तृतीया कलयुग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व अपार हार हार थके सब नहीं पाइय पार नारद आदि वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गायक थके गंधर्व नाच पच्छर पार सो सो थके महासुर पायो नह पार तब सा दोहरा एक समय श्री आत्मा उतरियो मसी बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल बेतैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहा श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब का मरण है कवन स्वर कह नरक को सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक अवतरक दोहरा को निंदा जस है कवन कवन पाप का धर्म कवन जोग को भोग है कवन कर्म अब कर्म दोहरा कहो सो सम का शोक है दम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहा रंग राजा कवन हरक शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत मोह तवन दोहरा कवन रेष्ट को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहा कर्म को कर्म है कहा भ्रम को नाश कहा चितन की चेष्टा कहा छेद प्रकाश दोहरा कहा नेम संयम कहा ज्ञान अज्ञान को रोगी सोगी कवन कहा धर्म की हान दोहरा को सूरा सुंदर कवन।

ਸਭ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਰਗ ਤਿਰਭੰਗੀ ਛੰਦ ਦੁਰਜਨ ਦਲ ਲੰਡਨ ਅਸੁਰ ਵਿਹੰਡਣ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਕੰਦਨ ਆਦਿ ਚਤਰਾਸੁਰ ਮਾਰਨ ਪਤੇ ਦੁਧਾਰਨ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਨ ਗੂੜ ਗਤੇ ਅਛੈ ਅਖੰਡੇ ਤੇਜ ਡੰਡੇ ਖੰਡ ਡੰਡੇ ਅਲਖ ਮਤੇ ਜੈ ਜੈ ਹੁਸੀ ਮੈ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਰੰਭ ਕਪੜਦਨ ਛਤਰ ਛਿਤੇ ਆਸਰੀ ਵਿਹੰਡਣ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਕੰਦਨ ਪੁਸ਼ਟ ਉਡੰਡਨ ਰੂਪਤੇ ਚੰਡਾਸੁਰ ਚੰਡਨ ਮੁੰਡ ਵਿਹੰਡਣ ਧੂਮਰ ਵਿਦੰਸਣ ਮਹਿਕ ਮਥੇ ਦਾਨਵ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਮ ਉਧਾਰਨ ਉਰਦ ਅਧੇ ਜੈ ਜੈ ਹੁਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਰੰਭ ਕਪੜਦਨ ਆਦਿਤੇ ਡਾਵਰੂ ਡਵੰਕੈ ਬਵਰ ਬਵੰਕੈ ਭੁਜਾ ਫਰੰਕੈ ਤੇਜ ਵਰੰਗ ਲੰਕੁੜੀਆਂ ਫਾਂਦੇ ਆਯੁਧ ਬਾਂਧੇ ਸੈਰ ਵੀ ਮਰਦਨ ਕਾਲ ਅਸੁਰੰਗ ਅਸ਼ਟਾਏ ਚਮਕੈ ਭੂਕਣ ਦਮਕੈ ਅਸੀ ਝਮਕੈ ਫੁੰਕ ਫਨੰਗ ਜੈ ਜੈ ਹੁਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਰੰਭ ਕਪੜਦਨ ਦੈਜ ਜਿਣੰਗ ਚੰਡਾ ਸੁਰ ਚੰਡਣ ਮੁੰਡ ਬਿਮੁੰਡਣ ਖੰਡ ਅਖੰਡਣ ਖੂਨ ਖਿਤੇ ਦਾਮਨੀ ਦਮੰਕਣ ਧੁਜਾ ਫਰੰਕਣ ਫਣੀ ਫੁੰਕਾਰਣ ਜੋਤ ਜਿਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਬਰਖਣ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਰਖਣ ਪੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਹਰਗਣ ਦੁਸ਼ਟ ਮਥੇ ਜੈ ਜੋ ਹੋਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਭੂਮਕ ਆਤਲ ਉੜਦ ਅਧੇ ਦਾਮਨੀ ਪ੍ਰਹਾਸਨ ਸੁਚਵ ਨਿਵਾਸਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗੂੜ ਗਤੇ ਰਕਤਾਸੁਰਾਚਨ ਜੁਲਤ ਪ੍ਰਮਾਚਨ ਨਿਰਦੈ ਨਰਾਚਨ ਧਰਮ ਬ੍ਰਿਤੇ ਸੁਰੋਣਤ ਅਚਿੰਤੀ ਅਨਲ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਯੰਤੀ ਖੜਗ ਧਰੇ ਜੈ ਜੈ ਹੋਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਪਾਪ ਵਿਨਾਸਨ ਧਰਮ ਕਰੇ ਅਗੋਗ ਨਿਵਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਜਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਾਰਨ ਸੁਧ ਮਤੇ ਫਣੀਅਰ ਫੁੰਕਾਰਨ ਪਾਗ ਬਕਾਰਨ ਸ਼ਸਤ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਸਾਧ ਮਤੇ ਜੈ ਸੈਤੀ ਸਨਾਹਨ ਅਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਹਨ ਬੋਲ ਨਿਵਾਹਨ ਤੇਜ ਅਤੁਲੰਗ ਜੈ ਜੈ ਹੋਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਭੂਮ ਕਾਲ ਪਤਾਲ ਚਲੰਗ ਚਾਚਰ ਚਮਕਾਰਨ ਚਿਛੁਰ ਹਾਰਨ ਧੂਮ ਦਕਾਰਨ ਦ੍ਰਭ ਮਥੇ ਦਾੜੀ ਪ੍ਰਦੰਤੇ ਜੋਗ ਜਯੰਤੇ ਮਨੁਜ ਮਥੰਤੇ ਗੂੜ ਕਥੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਣਾਸਨ ਚੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਤੇਜਨ ਅਸ਼ਟ ਭੁਜੇ ਜੈ ਜੈ ਹੋਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਭਰਮ ਵਿਨਾਸਨ ਧਰਮ ਧੁਜੇ ਘੁੰਗਰੂ ਘਮੰਕਣ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਝਮੰਕਣ ਫਣੀਅਰ ਫੁੰਕਾਰਣ ਧਰਮ ਧੁਜੇ ਅਸ਼ਟਾਡ ਪ੍ਰਹਾਸਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਿਵਾਸਨ ਦੁਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਸਨ ਚਕਰ ਗਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹੇ ਸੁਧ ਸਨਾਹੇ ਅਗਮਥਾਹੇ ਏਕ੍ਰਿਤੇ ਜੈ ਜੈ ਹੋਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਆਦਿ ਕੁਮਾਰ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਬੰਧਨ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਕੰਦਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਮ੍ਰਿਤ ਮਥੇ ਕਾਉਰੂ ਕੁਮਾਰੇ ਅਧਮ ਉਧਾਰੇ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੇ ਆਦਿ ਕਥੇ ਕਿੰਕਣੀ ਪ੍ਰਸੋਹਣ ਸਿਰ ਨਰ ਮੋਹਣ ਸਿੰਗਾਰੋਹਣ ਬਿਤਲ ਤਲੇ ਜੈ ਜੈ ਹੋਸੀ ਸਭ ਠੌਰ ਨਿਵਾਸਨ ਬਾਏ ਪਤਾਲ ਅਕਾਸ ਅਨਲੇ ਸੰਕਟੀ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਮ ਉਧਾਰਨ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਰਗਣ ਤੁੰਦ ਤਬੇ ਦੁਗ ਦੋਗ ਦਹੰਤੀ ਜਵਾਲ ਜਯੰਤੀ ਆਦ ਅਨਾਦ ਅਗਾਦ ਅਛੇ ਸੰਤਤਾ ਸਮਰਪਣ ਤਰਕ ਬਿਤਰਕਣ ਤਪਤ ਪ੍ਰਤਾਪਣ ਜਪਤ ਜਿਵੇ ਜੈ ਜੈ ਹੋਸੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਕਰਖਣ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਗਾਦ ਅਭੇ ਚੰਚਲਾ ਚਖੰਗੀ ਅਲਗ ਭੁਜੰਗੀ ਤੁੰਦ ਤਰੰਗਣ ਤਿਛ ਸਰੇ ਕਰਕਸਾ ਕੁਠਾਰੇ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੇ ਅਧਮ ਉਧਾਰੇ ਤੂਰ ਭੁਜੇ ਦਾਮਨੀ ਦਮੰਕੇ ਕੇਹਰ ਲੰਕੇ ਆਦ ਅਦੰਕੇ ਕਰੂਰ ਕਥੇ ਜੈ ਜੈ ਹੋਸੀ ਰਕਤਾਸੁਰ ਖੰਡਣ ਸੁੰਭ ਚਕਰਤ ਨਿਸੁੰਭ ਮਥੇ ਬਾਰਜ ਬਿਲੋਚਨ ਬ੍ਰਿਤਨ ਵਿਮੋਚਨ ਸੋਚ ਵਿਸੋਚਨ ਕੌਚ ਕਸੇ ਦਾਮਨੀ ਪ੍ਰਹਾਸੇ ਸੁਸਰਨਾਸੇ ਸੁਭ੍ਰਿਤ ਸੁਭਾਸੇ ਦੁਰੁਸ਼ਟ ਗ੍ਰਸੇ ਚੰਚਲਾ ਪ੍ਰੰਗੀ ਬੇਦ ਪ੍ਰਸੰਗੀ ਤੇ ਤੁਰੰਗੀ ਖੰਡ ਸੁਰੰਗ ਜੈ ਜੈ ਹੋਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਆਦ ਅਨਾਦ ਅਗਾਦ ਉਰਧੰਗ ਘੰਟਕਾ ਬਿਰਾਜੈ ਰੁਣ ਜੁਣ ਬਾਜੈ ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਭਾਜੈ ਸੁਨ ਸੁਰੰਗ ਕੋਕਲ ਸੁਨ ਲਾਜੈ ਕਿਲ ਬਿਗ ਭਾਜੈ ਸੁਖ ਬਰਾਜੈ ਮਦ ਉਰੰਗ ਦੁਰਜਨ ਦਲ ਦਜੈ ਮੰਤਨ ਰਿਛੈ ਸਭੈ ਨ ਭਜੈ ਰੋਰਣ ਜੈ ਜੈ ਹੋਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਚੰਡ ਚਕਰਦਨ ਆਦ ਗੁਰੰਗ ਚਾਚਰੀ ਪ੍ਰਜੋਧਨ ਦੁਸ਼ ਵਿਰੋਧਨ ਰੋਸ ਅਰੋਧਨ ਕੂਰ ਬਿਤੇ ਧੂਮਰਾਜ ਵਿਧੁੰਸਨ ਪ੍ਰਲੈ ਪ੍ਰਜੁੰਸਨ ਜਗ ਵਿਧੁੰਸਨ ਸੁਧ ਮਤੇ ਜਾਲਪਾ ਜਯੰਤੀ ਸਤਰ ਮਥੰਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਾਹਨ ਗਾੜ ਮਤੇ ਜੈ ਜੈ ਹੋਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਆਦ ਉਗਾਦ ਅਗਾਦ ਗਤੇ ਖਤਰੀਆਣ ਖਤੰਗੀ ਅਭੈ ਅਭੰਗੀ ਆਦਰੰਗੀ ਅਗਾਦ ਗਤੇ ਬ੍ਰਿੜ ਲਾਜ ਵਿਹੰਡਣ ਚਛੁਰ ਦੰਡਣ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡਣ ਆਦ ਬ੍ਰਿਤੇ ਸੁਰ ਨਰ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਨ ਪਦੇ ਉਧਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਦੋਖ ਹਰੇ ਜੈ ਜੈ ਹੁਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਵਿਸ ਵਿਧਨ ਸੰਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਦਾਮਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਉਂਤਨ ਨਾਸੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਅਤੁਲ ਬਲੇ ਦਾਨਵੀ ਪ੍ਰਕਰਖਣ ਸਰਵਰ ਵਰਖਣ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਧਰਖਣ ਬਿਤਲ ਤਲੇ ਅਸ਼ਟਾਇਦ ਬਾਹਣ ਬੋਲੀ ਬਾਹਣ ਸੰਜ ਪਨਾਹਣ ਗੂੜ ਗਤੇ ਜੈ ਜੈ ਹੁਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਆਦ ਅਨੀ ਅਨਾਦ ਅਗਾਦ ਮ੍ਰਿਤੇ ਦੁਗਧੋ ਪ੍ਰਵਛਣ ਸੇਵਕ ਰੱਛਣ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤੱਛਣ ਸੁਧ ਸਰੇ ਸਾਰੰਗ ਸਨਾਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਾਹੇ ਅਰਦਲ ਗਾਹੇ ਦੋਗ ਹਰੇ ਗੰਜਨ ਗੁਮਾਨੇ ਅਤੁਲ ਪ੍ਰਮਾਨੇ ਸੰਤ ਜਮਾਨੇ ਆਦੰਤੇ ਜੈ ਜੈ ਹੁਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਸਾਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਸ਼ਟ ਹੰਤੇ ਕਾਰਣ ਕਰੀਲੀ ਗਰਭ ਗੈਲੀ ਜੋ ਜਤੀਲੀ ਤੁੰਦ ਮਤੇ ਅਸ਼ਟਾਏ ਚਮਕਣ ਛਤਰ ਝਮਕਣ ਦਾਮਿਨ ਦਮਕਣ ਆਦਿ ਬ੍ਰਿਤੇ ਡੁਗ ਡੁਗੀ ਦਮੰਕੈ ਬਾਗ ਬਮੰਕੈ ਭੁਜਾ ਫਰੰਕੇ ਸੁਧ ਗਤੇ ਜੈ ਜੈ ਹੁਸੀ ਮੈਂ ਕਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਆਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਮਤੇ।
चचरासुर मारण नरक निवारण पद उदाहरण एक भटे पापान बहंडन दोष प्रचंडन खंड खंडन काल कट्टे चंद्रानन चार नरक निवारे पते सारे मुंड मथे जय जय होसी मै कासुर मर्दन धूम्र विदन संग आज कथे रक्तासुर मर्दन चंड चकरदन दानव अर्दन बिडाल बधे सरदार भी बरखन दुर्जन धरकन अतुल अमरखन धर्म धुजे धूमराज विदन संग श्रोण चंसन सोम नपात निसोम मथे जय जय होसी मै कासुर मर्दन आज अनिल अगाध कथे। तो प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते प्रसार जब दब अभूत अनभय अनंत कहो तो कहो जतामत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपालत भय अभूत अनभय दयाल दाता दुरंग दुख दोक हरहत जह नेत ने सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बनाओ सब आर पार जा को प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूढ़ क्यों सेव ना सेवंत ताहे सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूढ़ क्यों ना सेवंत ताहे कई मूढ़ पत्र पूजा करन कई सिद्ध सा सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिद्धा कराए प्रभु एक रूप द्वय कह लखाए अनछिज तेज अनभय प्रका दाता दुरंग अद्वय अनास सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय काल अच्छा स्वरूप करुणा धान कामल कृपाल दुख दोग हर दाता दयाल अंजन विहीन अन भंजना जल थल प्रभा सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भ्रम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अब चल पार जानी ना जाय जय रूप रे कह बास तास कह कौन भेक कह नाम तास है कमन जाय जय सत्र मित्र ने पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेल भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दा मेरा सिद्धं स्वरूप उद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अनशेज तेर अनभेज अदाग जल थल मही बंतन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जय जय पैर पार द्वीनान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जह नेत नेत निस दिन उचरंत तो प्रसाद सबये दीनन की व्रतपाल करें संत पार के निमन गारे पच पशु नग नाग नराज सर्व समय सबको व्रत पार है भोगत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है दीन दयाल दया नि दोखन देखत है पर देत न हर है दाहत है दुदोखन को दल जन के पल में दल डार है खंड खंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके पद मापद भेद कते भेद विचार है रोजी ही राज लोग राजिक रोग रहान की रोजी न टार है कीट पतंग कुरंग जंगम भूत भविक भवान बनाए देव देव खपे अहम एव न भेव लखे भ्रम सु भरमाए वेद पुराण कतेप पुराण हसेव धक्के कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत सिन परत सिओ केन श्री पद मापद पाए आद अनंत अगाध अद्वेक सो भूत भवेग भवाने अभय है अंत विहीन नातम आप अदाग अदोग अछेद्र अच्छा है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभ है दीन दयाल दयाकर श्रीपद सुंदर श्री पद्मापद ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देवहीन सने सबो तन नेह विरक्त गेह अच्छा है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर सी पद्मापद ल है रोगन ते अर्थोगन ते जल जोगन ते भाव भांत बचावे सत्रो अनेक चलावत घाव तउ तन एक ना लागन पावे राखत है अपनो कर द कर पाप संपूहन भेटन पावे और की बात कहा का तो सो पेट ही के पट बीच बचावे जाज भजंग सो दानव देव अभेद में सब ही कर ध्यावे भूम काल पताल सा चल जाज भजंग सबे सिर न्यावे पाए सके नी पार प्रवाह को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही कुजिया सुनहार परे रात न आवे नारद से चतर आनंद से रूप नारी से सब मिल गायो वेद गतेव न भेद लगे सब हार परे रात न आयो पाए सके नी पार वापस से सना सनातन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितो सब जय
जग छायो भेद पुराण कते पुरा भेद निर्पाण समय बनिहारे भेद ना पा सके अन भेद को खेदत है अन छेद पुकारे रागना रूपना रेखना रंगना सागना सोगना संगति हारे आदे अनाद अगाधा भेग अद भेग जपियो तिन ही कुल तारे तीरथ कोट की ऐशना दिए वो दान महाव्रत हारे देश प्रियो कर भेष तपोधन के धरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बोन्याज करे मुक्कारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तो प्रसाद कबित अत्र के चलैया छे छत्र के धरिया छत्र धारी के छलैया मा सतरन के साल हैं दान के दिवैया महामान के बढ़े अवसान के दिवैया गटैया जम जाल हैं ज्योत के जितैया विरत के मिटैया मा बुद्ध के दिवैया मा मानु के मान हैं ज्ञान हुके गाता मा बुद्धता के दाता देव काल हुके काल महाकाल हुके काल हैं पूर्वी ना पार पाव हिंदला हिमालय धावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम हैं जोगी जोग साधे पौन साधना कितने बादे अरब के अरबी अराधे तेरे नाम हैं फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछानी निज काम है मरहटा मंगेले तेरी मानसो तपस्या करे दड़बे दिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फेर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली की दलवाली तेरी आज्ञा में चलत है रो के रोहिले मांग देश के मंगेले वीर बंगसी बुंदेले पापुंज को मलत है गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीर्ष नियावे तिब्बती ध्याय दो देह को दलत है जिन्हें तो हे ध्यायो तिन्हें पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है देव देवतान को सुरेश दान वान को महत गंग दान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और कहूं पे ना दीन साध अधीन कहियत है पाइय अपार तेज पुंज में अपार सर विद्या के उदारे अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुंच जाता है चींटी की चिंगार पहले ही सुनियत है केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा विचार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है केते सस राशि केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है केते महादीन केते व्यासे प्रवीर केते कुमेर कुलीन के जज कहियत है करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पाता ही ते पार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइय न पार पै पार कह बखानी है अदवय अविनाशी परम पूरन प्रकाशी मा रूप होके राशि अनासी कह कह मानी है जंत्र हुना जा जा की बाप होना मायता की पूरन प्रभा की सो छटा कहने मानी है तेज हूं को तंत्र के राशि को जंत्र के मोनी को मंत्र निरंतर कह के जानी है तेज हूं को तारे के राशि को सारे को शुद्धता घर के शुद्धता की सार है कामना की खाने के साधना की सान है विरक्तता की बाने के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप के भूपन को भूपे के रूप को रूपे कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है नन को पहार है सिद्ध को स्वरूप के बुद्ध को अभूते के क्रोध को अभूते के अच्छा विनाशी है काम को गुनिंदा के खूबी को दिहिंदा के नीमन गरिंदा के तेर को प्रकाशी है कालू के काले के सतरन के साले के मित्रन को बोगते के वृद्धता की वासी है जोग हूं को जंत्र के तेज हूं को तंत्र के मोहनी को मंत्र के पूरन प्रकाशी है रूप को निवास के बुद्ध को प्रकाश के शुद्धता को वास के बुद्ध हूं को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव या देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचाए मान को दिवैया जम जाल को कटाए कामना कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को भरने के आपदा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है पाइय न पार पारावारों को पार जाओ कीजत विचार सो विचार को निवास है हिंगला हिमालय गावे हबसी हलपी धावे पूर्व बिना पार पावे आसाते अनास है देवन के देव मा देव हूँ के देव है निरंजन अभेव नाद अद्वय अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण के सेवक अधीन कटैया जम जाल के देवन के देव मा देव हूँ के देव नाद भूम के बुजैया है मुहे मा बाल के राजन के राजा मा साजू के साजा मा जोग हूँ को जोग धरैया छाल के कामना के करेंगे बुद्धता को हरे के शुद्धता की शादी है काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा व छात कैसी छतराने छपा कैसी छप काली नदी के कूल के हंस निसी सिहारू हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातों से रूल के परासी पलाव का रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नीके रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत हरी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश गवाऊगढ़ काशीपुर सीरासी सुरंगाबाद नीके सोईयत है
हिमासी हिमालय और हापसी हल्ला बानेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोही आते हैं। चंदन सी चंपावती चंद्रमासी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जो ही आते हैं। गंगा सम गंग धार कांसी बिलंदाबाद की रति हरी की उजारी सोही आते हैं। फरासी फिरंगी फरासी इसके दुगरंदी मगरान के मृदंगी तेरे गीत गाई आते हैं। भखरी गंधारी गोर गखरी गर देदाचारी पौन के हारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब कलाऊ गौरऊ कमाऊ सर्व ठौर में विराजे जहाँ जहाँ जाइयत है। पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र ते अतापी नाद कीरति हारी को न पार पाइयत है। तो प्रसाद पादड़ी छंद अद्वैनास आसन अडोल अद्व

श्रेष्ठ जय कर बजार उस्तत संपूर्ण अंग वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। खुशियां दे जकारे जावे सो निहाल हो जावे सत श्री अकाल गुर बरकाल देव।

दीनी कहूं फूल राजा होए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तुत पाता सकल मलेच करो रण गाता जे अस ध्वज तौ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख

साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी, पंज प्यारे चाली मुक्तियो सरब शहीदो।

बलिदान में नथ लिखा के मेरे तम सक लाइए कूड़ा लाल छटिए हो एक मना लग धियाइए फलते हो पाई जे वही कार कमाई जे होए पूर्व लिखिया था तोड़ती ना दी पाइए मत